0: अगर इस सेंटीमीटर में नापेंगे तो फिर वो 9 से 11 तक हो जाता है, थोड़ा आगा पीछा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए 8 इंचेस का पोर्शन अगर हम काट दें सेंटर से, स्टर्नम के मिडल से लेकर 4 इधर इंचेस 4 उधर इंचेस, तो पूरी छाती को पीछे तक काट दें जहां तक रीढ़ की हड्डी है। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मिडास्टाइनम, मिड वाला पोर्शन। और इस मिड वाले पोर्शन के बारे में मैंने आप सब लोगों को ये कहा था कि ये एक कॉमन रास्ता है, कॉमन पाथवे है। बेशक इसके अपने ऑर्गन भी हैं, जैसे हार्ट है इसी में है, लेकिन ये ज्यादातर पाथवे का काम करता है कि सभी के आने जाने का कॉमन रास्ता है। सिर से नीचे आने वाली जितनी भी चीजें हैं, मुंह से नाक से आने वाली नालियां जो भी हैं, ये नीचे को जाने के लिए इसी रास्ते से जाती हैं। नीचे की बॉडी से ऊपर दिल को छाती को आने वाली या ऊपर ब्रेन को पहुंचने वाली जो चीजें हैं, नसें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो भी कुछ है सारा, ये सारा ताना बाना इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया ना, है ना?
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यह दोनों पास तो थले वाला हिस्सा जो उपर नो सब कुछ भेजता, उपरला पासा जो थले आले नु भेजता। सो दोने वखरे वखरे हिस्सा दे विच जिहड़ी आ ओह एक किस्म दी नहर ला लो जां जो भी सोर्स तुसी मनदे आ ओह ला लो, दोनों पासयां नु इह कनेक्ट करके रखदा जी।
0: आजकल कुछ स्कूलों में ऐसा चलन चला हुआ है कि अगर आप लोग हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो आपको बेंच पर खड़ा कर देंगे।
1: बिल्कुल
0: मैंने ये सुना है कि पंजाब में कुछ स्कूलों में
1: इस तरह ऐसा कर दिया। बिल्कुल हो रहा है
0: ना, तो इसको बचाने की जरूरत है। ये इतनी सी छोटी सी बात नहीं जो हमने कह,
1: छोटी सी बात नहीं है, ये कल्चरल वॉर जिन कहते हो रहा डॉक्टर साहब, कल्चरल वॉर है, दूसरे कल्चर को खत्म करना। बिल्कुल,
0: पंजाबी जितने भी बहुत सारे लोग पंजाबी लोग सुन रहे हैं इस बात को, और इनको ये गौर करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पंजाब में भी अगर हम पंजाबी नहीं बोल पाएंगे स्कूलों में तो कहाँ बोलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो इस बात को चलो आगे छोड़ते हैं। हम लोग छाती की बात कर रहे थे, तो मिडास्टाइनम की बात कर रहे थे, तो मिडल पोर्शन छाती का जो है वो सिर्फ 8 इंच का है और पीछे को जाता है। किसी की छाती 32 इंच फूलती, किसी की 35 इंच फूलती, किसी की कितनी, तो उसके मुताबिक ये इतना सीधे के सीधा हिस्सा सामने जाता है। जैसे वो जब बांग्लादेश नहीं बना था ना, तो वो पाकिस्तान वाले बोलते थे हमें कॉरिडोर दीजिए
1: जी,
0: ईस्ट पाकिस्तान के लिए हमें कॉरिडोर दीजिए कि हम जा सके फ्रीली। तो उसी तरह का ये कॉरिडोर है जी। इस कॉरिडोर से बहुत सारा सामान ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है, और उसकी शिनाख्त हमने ये करी थी कि अगर इसको हमने आसानी से समझना है तो फिर और ये इसके पोर्शन कर दें। इसके पोर्शन हमने कर दिए थे, एक तो बिल्कुल सामने, अगर छाती की हड्डी सामने वाली हमने हटा दी तो जो पोर्शन सामने दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर का मतलब होता है बिल्कुल सामने। दूसरा बीच का पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं मिडल पोर्शन, और मिडल पोर्शन से आगे बाकी जो रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे को जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। सो इस चीज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले तो छाती को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, उसके बाद ये जो मिडास्टाइनम का पोर्शन था उसको फिर दूसरी तरफ 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। उसके बाद 3 हिस्सों को ही इसका जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा, जैसे हमारे ट्रंक है ना, टर जिसको हम बोलते हैं छाती और अब्डोमेन का, इसके ऊपर सिर है वो अलग है, सिर का पोर्शन अलग है जो नेक्सस से जुड़ा। इसी तरह ही अगर हम इस मिडास्टाइनम को इसका कुछ पोर्शन ऊपर से काट दें, ऊपर से अलग कर दें, तो क्या होगा? मिडास्टाइनम के तीनों हिस्से हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, और इनके ऊपर वाले हिस्से हमने काट दिए, नाम तो उनका वही रहेगा, नाम को सुपीरियर ही रहेगा, नाम उसका इंटीरियर ही रहेगा, नाम उसका मिडल ही रहेगा, नाम उसका पोस्टीरियर वही रहेगा, लेकिन ऊपर वाले कुछ हिस्से हमने ऊपर काट दिए और सारे का नाम हो गया सुपीरियर। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसके वो तीनों हिस्से हो गए एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। सब बड़ी आसानी से समझ आ जाने वाली बात है। फिर हमने ये बताया था कि इस सुपीरियर पोर्शन जो मीडियास्टाइनम का जो ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा हमने काट दिया है उसमें अंग कौन कौन से हैं। सो अंग कौन कौन से जब बताए हमने तो हमने ये कहा कि सबसे पहले तो खुराक वाली नाली जो मुंह से जाती नीचे और एक जंक्शन था एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिस से वो पीछे हो जाती है, सांस वाली नाली जो नाक से चलती थी वो यहाँ आकर आगे हो जाती है। एपिग्लोटिस का एक जंक्शन था जिसको हमने कुदरत ने कवर कर दिया था ट्रेकिया से ताकि इसको कोई चोट न लगे, कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, तो उसको बचाव के लिए उसके लिए जैसे जरूरी अंग छाती के हार्ट है लंग्स है उनको बचाने के लिए कुदरत ने रिब्स बना दी, पसलियां बना दी। इसी तरह ही ट्रेकिया वाला ये जो जंक्शन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ट्रेकिया बना दी। तो ट्रेकिया से जैसे ही ये नीचे आती हैं वैसे ही इसका नाम बदल गया था। जो खुराक वाली नाली थी उसको हमने ईसोफेगस कहा था, जो सांस वाली नाली थी उसको हमने पहले लैरिंग्स कही थी, अब इसका नाम जो है ब्रोंकस हो गया था। तो ये जो चीजें हैं हमने कहा कि इस ऊपर वाले पोर्शन में अगर इतना हिस्सा काट दे ऊपर वाला तो उसमें एक तो ईसोफेगस हो गया, एक ट्रेकिया होगी। एक और बात जो मैंने आम ज्यादा नाम नहीं उसका लिया, वो ज्यादा नाम इसलिए नहीं लिया कि वो आम लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं रहती, लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त इसकी बहुत इम्पोर्टेंस रहती। हमने ये कहा कि माँ के पेट में जब बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो उस वक्त इसके पास प्रोटेक्शन क्या है, बेचारा अकेला है, स्पर्म और ओवम आपस में मिल गए हैं लेकिन ये अकेला हो गया, एक चीज बन गई है, इसकी रक्षा कौन करेगा। बाहर से तो हम डॉक्टर को बुला देते हैं, टीके लगवाते हैं, ताकत के ये करते हैं वो करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अंदर क्या होगा। तो उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि उस एरिया को समझाते हुए गुरबानी ने कहा था जब 10 मास उर्द्वमुख होता है ना, वो सारा श्लोक मैंने बोल दिया था है? रे भैया काहे फिरता फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्द्वमुख रहता शोधन कैसे भूल गया। ये वो स्थिति थी और उस स्थिति में भी कुदरत ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा और कोई वाली वारिस नहीं है तो मैं हूं। तो उसने अपनी जगह थाइमस ग्लैंड बना दिया था। थाइमस ग्लैंड उस वक्त इसकी प्रोटेक्शन करता है, इम्यूनिटी बनाता है, एक इम्यूनिटी का नया उसने हालात एक चैप्टर शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं बाद में तो हम WBC आपको दे देंगे जो आपकी रक्षा करेंगे अलग अलग तरह की, लेकिन अब WBC के जितने भी अंग हैं न्यूट्रोफिल बेसोफिल इसनोफिल मोनोसाइट लिम्फोसाइट सब की जगह हमने आपको एक चीज दे दी उसका नाम है थाइमस। और वो थाइमस भी इस सुपीरियर वाले पोर्शन में खास तौर पर इंटीरियर वाले पोर्शन हिस्से में रहता है, ठीक है। और वो थाइमस ग्लैंड का काम ये है कि आम तौर पे ये जहां पर हार्ट बनना शुरू हुआ था 5वें हफ्ते में इसके ऊपर लगा होता है, जब वो पेट में आ जाता है सॉरी बच्चा पैदा हो जाता है तो छाती में हार्ट के ऊपर लगा हुआ ये थाइमस ग्लैंड उसकी तब तक प्रोटेक्शन करता है जब तक के इसकी अपनी इम्यूनिटी स्टार्ट नहीं हो जाती। जब तक ये अपने आप अपनी रक्षा करने के काबिल नहीं हो जाता तब तक ये थाइमस ग्लैंड इसकी रक्षा करता है। इसकी और बात मैंने आप सब लोगों को बताई थी, मैंने ये कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ये कहा था उसका मतलब नहीं कि मैंने सब कुछ किया है, किया तो कुदरत में है, लेकिन उसको बताने के लिए जो मैंने कहा था उसको पढ़कर किया था कि भाई दिल से खून जाता है हर एक सेल में, हर एक सेल से खून वापस आता है, वहां से गार्बेज लेकर लेकर जाता है ऑक्सीजन और खुराक, लेकर आता है वहां का गार्बेज और बचा हुआ खून, और उसमें वहां का गार्बेज जो लेकर आता है वो कई बार ज्यादा हो जाए संघना हो जाए, हमारे घरों में भी जो गार्बेज लेकर वो नाला जाता है नीचे, अगर ज्यादा संघना हो तो नाली बंद हो जाती है, फिर वो हम लोग को जो नेलिंग करनी पड़ती है साफ सफाई करवाते हैं। इसी तरह वो बंद ना हो जाए चलता रहे, कुदरत ने एक नया चैनल साथ में बना दिया था जिसको हमने लिम्फ चैनल बोला था, और वो जो लिम्फ चैनल बोला था कि उसके अलग अलग जगह जंक्शन बना दिए थे कि भाई अगर गर्भ ज्यादा हो जाए खून ये सही सरे ना चल पाए वापसी जाने वाला जिसको वेनस बोलते हैं हम लोग वेनस सर्कुलेशन है, तो इससे फिल्टर होकर गर्भ अलग हो जाए खून अलग हो जाए। और उसके अलग अलग जंक्शन से लिम्फ नोड वगैरह थे, अगर बहुत ज्यादा गर्भ जा जाए, कैंसर वगैरह हो गया, कुछ ऐसी तकलीफ हो गई, तो वहां अलग अलग जगह में उसको स्टोर करने की कोशिश की कुदरत ने, ताकि पूरे अंग में यो गर्भ ना फैले। पूरे अंग में अगर कैंसर वाले की हालत ही है तो वो इस तरह पूरे अंग में ना फैले, उसको बचाने के लिए वहां का ये जो गर्भ इकट्ठा कर लिया। लेकिन मान लिया जाए प्रॉब्लम ही इस तरह की आ गई कि ये गार्बेज इतना ज्यादा हो गया, कि अब ये इस ग्लैंड अलग अलग जो जगह है जहां पर ये लिम्फ नोड्स हैं वो सब भर गई हैं, नहीं संभाल पाती इन चीज को, नहीं साफ कर पाती खून को, तो वो आगे भेज देती है, वो तिली के पास चली जाती है, स्प्लीन के पास चली जाती है जो हमारी बाईं तरफ लगी हुई है। स्प्लीन का काम भी ये है कि जितने नए सेल बनकर बोन से आते हैं उनको स्क्रूटिनाइज करना, उनको सेट करना, कि जो काम करने लायक हैं। ये ट्रेनिंग तो ली है इन्होंने फौज से, ये लोग आ गए हैं लेकिन ट्रेनिंग पूरी कर ली है, अब ये काम करने योग्य हैं कि नहीं है, ये तिली का काम है, स्प्लीन का काम है। तो स्प्लीन उस ब्लड को जो हर वक्त लगातार खून में बोन्स में बनता है और खून में शामिल होता है, जब तिली में आता है तो ये उसको देखती है कि स्टैंडर्डाइज है, ये फौजी काबिल है जंग करने के लिए, उनको आगे भेज देती है, नहीं तो फिर दूसरों को दोबारा रिजॉल्व कर देती। इसी तरह ही ये जो फैट, ये जो गार्बेज जा रहा है हर एक अंग से इकट्ठा होकर, अगर वो अपनी अपनी जगह लिम्फ नोड के लगे हुए स्टेशन जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर वो भी तिली के पास पहुंच जाता है। सफाई नहीं हुई हमसे भाई, हमने आपको बॉस को भेज दिया। तो ये जो तिली है, स्प्लीन है, ये इस चीज का बॉस है कि अगर लिम्फ नोड में इन खून के सेलों की पूरी सफाई नहीं हो पाई, गंदा खून है, इसमें गार्बेज ज्यादा है और गार्बेज भी कैंसरस टाइप का है और इसका ये खतरा है कि दूसरे अंगों में जाएगा तो वहां भी फैलेगा, तो उसको स्प्लीन साफ करती है। अब मान लिया जाए किसी हालात में बेचारी स्प्लीन भी काम नहीं कर सकती, इतना काम आ गया, एक जो नए सेल आ रहे हैं बोन से बन के उनको देखना है, एक ये पुराने सेल जो आ रहे हैं काम लगे हुए हैं और वो खराबी होगी, उनमें कैंसर, उनकी गार्बेज डाल गया, खराब हो गए, उनको सफाई करनी हैगी, काम बढ़ गया, तो उस हालात में इतनी आमतौर पर स्प्लीन फैल जाती है। और फिर भी ओवर वर्क जो है वो कौन संभालता है शरीर में? ओवर वर्क जिंदगी को चालू रखने के लिए कुदरत ने फिर कहा कि भाई थाइमस ग्लैंड, तुम पहले काम करते थे या फिर तेरी छुट्टी होगी, तुम रिटायर हो गए, लेकिन अब तो लड़ाई लग गई है, अब इसलिए तुम भी बाहर आओ, और जो जितने भी रिजर्व घर में गए थे रिटायर लोग फौजी थे उनको सबको बुला लेती है ना मिलिट्री। उसी तरह ही ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये फिर एक्टिव हो जाता है और फिर ये काम करना शुरू कर देता है। तो मैं उस थाइमस ग्लैंड की बात कर रहा हूं जो ऊपर वाला मीडियास्टाइन का पोर्शन हमने काट दिया था, उसके सामने वाले पोर्शन में, इंटीरियर पोर्शन में ये थाइमस ग्लैंड भी होता है। और मैंने ये कहा कि चिल्ड्रन में आमतौर पर तीन एज तक ये थाइमस ग्लैंड काम करता रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा काम होती रहती है, और जब वो पूरी तरह एडल्ट हो जाते हैं तब उनको इसकी जरूरत नहीं रहती, वो अपनी इम्यूनिटी खुद बनाना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, रिटायर हो गया है, पड़ा हुआ घर में रोटी पानी खा रहा है, तो ये काम उसका उस वक्त होता है, जैसे ही बच्चा टीनेजर होता है इम्यूनिटी उसकी बढ़ गई। और मान लिया जाए कई बहुत वीक बच्चे होते हैं, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होती है, किसी को जेनेटिक टाइप की बीमारी होती है, जो अपना खुद इम्यूनिटी बनाने के काबिल नहीं होते, उनका वैसे भी एक्टिव रहता है। तो ये थाइमस उस ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये स्पेशल तौर पे इस ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। तो मैंने दो बातें कर दी, एक तो ये मैंने कहा कि इंटीरियर पोर्शन में ये ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है और ये पीछे को जा रहा है, इसमें एक डायवर्शन हो जाता है पीछे को जाना, सांस वाली नाली जो पीछे थी वो आगे आ गई, तो वो ब्रोंकस का जो जंक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेन ब्रोंकस जो उस जंक्शन से निकली थी ना, उसका वो हिस्सा इस इंटीरियर पोर्शन में रहता है। ठीक है। उसके बाद जो वो ट्रेकिया से निकला, ट्रेकिया का हिस्सा हुआ, बाइफर्केशन ब्रोंकस का भी हुआ, और हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर ये थाइमस लगा हुआ था, ये थाइमस हार्ट के ऊपर वाले पास लगा होता है, और ये भी था। तो ये सारी चीजें इस इंटीरियर पोर्शन में होती हैं। दूसरा, इसको पोर्शन को आगे काटकर हम पीछे चले गए, मिडिल पोर्शन में चले गए। सो मिडिल पोर्शन में ज्यादा हार्ट का पोर्शन रहता है, और ट्रेकिया ने जो बाइफर्केशन कर दिया था वो दोनों हिस्सों में बंटकर दोनों फेफड़ों को जाने वाला है, तो वो बाइफर्केशन वहां पर रहता है, जिसको हमने कहा था ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये जो दोनों राइट और लेफ्ट ब्रोंकस है ना, ये मिडल वाले पोर्शन में रहती है। अब आई तीसरी बात, जो पीछे का जो रीढ़ की हड्डी के साथ लगा हुआ मीडियास्टाइनम का पोर्शन है, उसमें बेचारा बच जाता है ईसोफेगस या नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये जो साथ साथ में चल रहा है, तो वो उस एरिए में आता है। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि भाई ये तो ऊपर वाला सिर वाला पोर्शन हो गया, सुपीरियर पोर्शन की बात आ गई। अब इस एरिए में खून की नाड़ियां भी होंगी, नर्वस सिस्टम भी होगा। वो इस एरिया में जो होता है, सबसे पहली बात है एओर्टा। एओर्टा वो नाली है जो दिल से खून लेती है बाएं वेंट्रिकल से, और पूरे शरीर को सप्लाई करती है। ये दिल का बायां हिस्सा जो है, जहां से ये नाली निकलती है, वो बिल्कुल बॉटम पे है, बेस पे है, और वहां से निकलकर हार्ट के ऊपर सिर की तरफ जाता है, हार्ट के सिर की तरफ जाता है, थाइमस के ऊपर से, थाइमस के ऊपर से ये इसको एक कर्व बनता है, कर्व बनता है, उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। जो लेफ्ट साइड से नीचे से शुरू होता है ऊपर जाता है, उसका नाम असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा जब घूम कर पीछे को जानी शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। और आर्च ऑफ एओर्टा के फिर अलग अलग हिस्से हैं, जो छाती के हिस्से में रहता है, जो मिडिल पोर्शन में आएगा, छाती के हिस्से में रहता है, उसको थोरेसिक एओर्टा बोल देते हैं। छाती से जो निकल जाता है, पेट की तरफ चला जाता है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पीछे, और उसको हम एब्डोमिनल एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा बोल देते हैं। तो इसी तरह आर्च ऑफ एओर्टा हमारे मिडिल पोर्शन में हो गया। ब्रोंकियल ट्यूब जो है, दो बटकी सी राइट और लेफ्ट, ये इसमें रहती है। उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो ये है कि सबसे पहले ज्यादा खून, टू थर्ड बोलते हैं उसको, अगर तीन हिस्से कर दें, जितना खून दिल से एक बार निकलता है, पंप होता है पूरे शरीर को जाने के लिए, उसमें टू थर्ड, दो हिस्से, तीन में से दो हिस्से वो ब्रेन को जाते हैं, और कैसे जाते हैं, कैरोटिड आर्टरी से। कैरोटिड आर्टरी कहां से निकलती है, ये जो आर्च ऑफ एओर्टा हम बोल रहे हैं ना, जहां घुमाव होगा इसका, जो एओर्टा को घुमाव हो गया, आर्च होगी इसकी, ये पीछे को चली गई रीढ़ की हड्डी के साथ, उससे निकलते हैं, और उन दोनों का नाम है राइट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और ये पोर्शन हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसी एरिया में है, वो ये है, मैंने आप सब लोगों को बताया था कि भाई हमारी जो क्लेविकल की हड्डी है ना, इसके नीचे से एक ऐसी वेन आ रही है, वेन का मतलब है जो बाहर से खून लेकर आ रही है, जो गार्बेज वाला खून लेकर आ रही है, वेन आ रही है, उसका नाम है सब क्लेवियन वेन। उन सब क्लेवियन वेन जो है ना भाई, सब का मतलब होता है नीचे, क्लेवियन का मतलब क्लेविकल हो गया, वेन का मतलब वो जो बाहर से सब कुछ सामान लेकर आ रही है। तो सब क्लेवियन वेन हमारी ये आर्म का और उंगलियों का, ये पूरे का खून वापस लेकर जा रही है, लेकिन इसमें एक और चीज आकर रल जाती है, वो सिर्फ बाईं तरफ रलती है। हालांकि मैंने ये कहा कि सब क्लेवियन आर्टरी राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, लेकिन मैं लेफ्ट साइड को ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूं कि इसमें एक और चीज आकर रल गई है। वो क्या है कि जितना भी मैंने कहा, फिर दोबारा समझा दूं, क्योंकि मेरा मतलब ये है नहीं कि बतौड़ कर आगे जाना, आपको समझ लगे। आपने खुराक खाई, खुराक जो भी साग सब्जी मीट ये जो भी कुछ आपने खा लिया, वो खाकर अगर आंतड़ियों में पहुंच गया, आंतरियां एक तरह कोल्हू का काम करती है, निचोड़ती है, जैसे कोल्हू सरसों के तेल का तेल निकालता है ना, ये ऐसे ऐसे घूमती हैं और एक कोल्हू का काम करती हैं, मतलब उससे वो जो असल मवाद होता है, वो असल तत्व होते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये निचोड़ कर उससे बाहर आते हैं, प्रेशर बढ़ता है, बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर की तरफ एक मेसेंट्री, एक जाल लगा हुआ है, हमारी आंतरियों के ऊपर ऊपर एक जाल लगा हुआ है और वो जो जाल है उसका नाम है मेसेंट्री। मेसेंट्री में छोटी छोटी नालियां बनी हुई हैं और उन नालियों से वो जितना भी निचोड़ा, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद बूंद बूंद जितना भी निचोड़ता, वो पीछे जाकर इकट्ठा हो जाता है रीढ़ की हड्डी के पास। रीढ़ की हड्डी के पास कुदरत ने एक टैंक लगा दिया है, भाई जितना जितना भी खुराक से निकले चीज, असली रस निकले, वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहे, उसका नाम है सिस्टर्ना चाहिए। और वो एक ट्रंक है जो हमारे लंबर एरिया जो है, जिसको बोलते हैं लोअर बैक, लोअर बैक रीढ़ की हड्डी के अंदर वाले पासे, पेट वाले पासे, बाहर वाले नहीं, पेट वाले पासे ये टैंक लगा हुआ है और ये टैंक वहां से शुरू होता, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये निचोड़ कर उससे बाहर आते हैं, प्रेशर बढ़ता है, बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर की तरफ एक मेसेंट्री, एक जाल लगा हुआ है, हमारी आंतरियों के ऊपर ऊपर एक जाल लगा हुआ है और वो जो जाल है उसका नाम है मेसेंट्री। मेसेंट्री में छोटी छोटी नालियां बनी हुई हैं और उन नालियों से वो जितना भी निचोड़ा, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद बूंद बूंद जितना भी निचोड़ता, वो पीछे जाकर इकट्ठा हो जाता है रीढ़ की हड्डी के पास। रीढ़ की हड्डी के पास कुदरत ने एक टैंक लगा दिया है, भाई जितना जितना भी खुराक से निकले चीज, असली रस निकले, वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहे, उसका नाम है सिस्टर्ना चाहिए। और वो एक ट्रंक है जो हमारे लंबर एरिया जो है, जिसको बोलते हैं लोअर बैक, लोअर बैक रीढ़ की हड्डी के अंदर वाले पासे, पेट वाले पासे, बाहर वाले नहीं, पेट वाले पासे ये टैंक लगा हुआ है और ये टैंक वहां से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है सब क्लेवियन

पास कुदरत ने एक टैंक लगा दी है भाई, जितना जितना भी खुराक से निकले चीज असली रस निकले वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहे, उसका नाम है सिस्टरना चाहिए। और वो एक ट्रंक है जो हमारे लंबर एरिया जो है जिसको बोलते हैं लोअर बैक रीढ़ की हड्डी के अंदर वाले पासे, पेट वाले पासे, बाहर वाले नहीं पेट वाले पासे ये टैंक लगा हुआ है। और ये टैंक वहां से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है सब क्लेवियन वेन की तक, जहां पर सब क्लेवियन वेन है जो वहां से यूज किया हुआ खून लेकर दिल को पहुंचाने वाली है, ये वहां नीचे से भरता जाता है ऊपर उसमें गिरता जाता है। जब आप खुराक नहीं खाते तो भाई फिर उसमें जाएगा नहीं ना, इसी को उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी हो जाएगी कि भाई खुराक तो खाई नहीं, या आयरन ही नहीं खाया, या किसी तरह का मिनरल्स हमारी शरीर में कमी होगी, तो उसको हम शरीर से देखकर बता देते हैं ना कि भाई इसके शरीर में आयरन की कमी है, इसके शरीर में सोडियम की कमी है, इसके शरीर में पोटेशियम बढ़ गया है या कम हो गया है, हम लोग चेहरे से देखकर बता देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उस खुराक से निचुड़ कर पूरी तरह फ्यूज होकर ये मटेरियल उस सिस्टरना चाइली में जाता है। वो एक बड़ा टैंक है जो ऊपर तक फैला हुआ है हमारी बाईं तरफ की क्लेविकल की हड्डी के नीचे तक, वहां पर जाकर ये सब क्लेवियन वेन के साथ मिल जाता है। और जो जो ऊपर भरता रहता है, नीचे से भरता रहता है, ऊपर उठता है और उसमें गिरता जाता है। मतलब क्या हुआ कि वो ऑलरेडी खून को लेकर आ रही है, जो खून इस्तेमाल हो चुका है, अब उसमें क्या है, पोटेशियम भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, विटामिन्स भी नहीं है, लेकिन किसने उसको विटामिन्स पोटेशियम ये वो जो भी कुछ चाहिए शरीर को डाल दिया, ये मिक्सचर होकर ये हार्ट में चला गया ताकि इसमें ऑक्सीजन की कमी रह गई है। अब वो ऑक्सीजन की कमी जो फिर वे हार्ट फेफड़ों को भेजेगा तो स्थिर हो जाएगी। खैर मैं केवल आपको इतना आज के लेक्चर में ये बताना चाहता था कि भाई ये जो सब क्लेवियन वेन है इसका वो जो जंक्शन है वो यहाँ पर आकर ऊपर वाले हिस्से में रहता है, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में सब क्लेवियन वेन का पूरा मटीरियल इसी जंक्शन में रहता है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कल जब हम दोबारा इससे आगे चलेंगे तो फिर हम बताएंगे कि इस एरिया में अंग कौन कौन से हैं और बीमारी किस किस को हो सकती है और किस किस को बीमारी होगी, कैसे पता चलेगा यार ये सब क्लेवियन वेन की बीमारी है, कैसे पता चलेगा कि यार ये तो आयोटा वेन के आर्टरी की बीमारी है, कैसे पता चलेगा कि ये कैरोटिड आर्टरीज की बीमारी है। तो वो सब चीजें जानने के लिए ये मैं नाम आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि नीचे से ऊपर को हमारी खुराक से हजम होकर जो भी खुराक की तत्व है शरीर को चाहिए वो यहाँ सब क्लेवियन वेन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। वेन का मतलब कि जो वो इस्तेमाल किया हुआ खून दिल को लेकर जा रही है ताकि आगे आगे इसकी सफाई अलग अलग, किडनी में अलग सफाई होगी, फेफड़ों में अलग सफाई होगी, स्किन में अलग सफाई होगी, फिर आगे सर्कल में जाएंगी, लेकिन उसको खुराक यहाँ पूरी हो जाएगी कि तेरे को ये चाहिए ये ले, तेरे को नमक चाहिए ये ले, हाँ जी वो यहाँ से पूरा हो जाता है। तो वो जो एरिया है, वो जो इम्पोर्टेंट बात होगी ना, वो जो चीज है वो यहाँ पर इस एरिया में मिडल पोर्शन में रहती, समझ लगी बड़ी अच्छी तरह। सो उसके बाद असेंडिंग उल्टा कुछ आर्च है वो नीचे को झुकी, उसके बाद एक और चीज इसी मिडल वाले पोर्शन में रहती है वो ये है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। अब पल्मोनरी ट्री की बात तो हमने की थी आपको, लेकिन जो इस फेफड़ों को खून पहुंचा रही है, खुराक दे रही है, उस पूरे जंक्शन राइट फेफड़े को भी दे रही है, लेफ्ट फेफड़े को भी दे रही है, और उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ये भी यहां होगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई ऊपर वाली तो बात मैंने आपको बता दी कि भाई जो नया खुराक हजम हुई है वो सब क्लेवियन वेन के जरिए हार्ट में पहुंच गई। फिर इसमें और दो चीजें हैं, सिर से वापस आने वाला खून, सिर से वापस आने वाला खून जो इस्तेमाल कर लिया सिर ने, दो दो नालियां गई थी कैरोटिड आर्टरी,

कैरेटल आर्टरी ने फ्रेश खून उसको पहुंचा दिया था, उसने खुराक ले ली, ऑक्सीजन ले ली, गार्बेज फिर वापस उसने भेजना है, तो उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। वेना केवा सुपीरियर का मतलब ऊपर से खून लेकर वापस आ रही है, ये भी वेन है। इसका नाम भी अगर हम वेन लगा दे तो आसानी से समझ जाएंगे कि ये वापस आ रही है, वेना कावा, ठीक है, वेन से बन गया वेना कावा, मतलब ये ऊपर से खून सिर से लेकर गर्दन से लेकर दिल को पहुंचा रही है, वो भी इस मिडल पोर्शन में, सामने का वाला नहीं, मिडल पोर्शन से है। उसके बाद पांव से लेकर नीचे के पूरे शरीर का खून लेकर वापस आ रही है एक नाड़ी, और उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। वेना केवा वही वेन्स से बना हुआ है, तो ये वो नाड़ी है। तो मतलब इतना बड़ा जंक्शन, सारे शरीर का खून अलग अलग नाड़ियों से इकट्ठा होकर दिल को जो जा रहा है वो इसी मिडल वाले पोर्शन में। अब भाई कितना बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, इंटीरियर में नहीं रखा कुदरत ने ना, कहीं ऐसा छोटी मोटी चोट लग जाए यार, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर तो हमने सोना रखा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए कुदरत ने इसको मिडल वाले पोर्शन में रखा है कि इसमें असेंडिंग ओरटा, असेंडिंग ओरटा है, इसमें आर्टा भी ओरटा है, इसमें सुपीरियर वेना केवा है, इसमें इंफीरियर वेना केवा है, इसमें सब क्लेवियन वेर है। इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, और इन चीजों को खून सप्लाई करने के लिए भी उनका जो पल्मोनरी ट्रंक है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, फेफड़ों को खून देने वाली नाड़ी। तो मतलब ये है इतनी सारी चीजें जो हैं इस मिडल वाले पोर्शन में है। तो जब बीमारियां बताएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना ये जानना कि भाई ये आर्टरी की बीमारी है कि वेन की बीमारी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई ये आर्टरी की बीमारी है, ये वेन की बीमारी है। बड़ी आसान सी बातें मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि भाई आम आदमी ये समझ जाए कि ना ना ना ना, ना ये आर्टरी की नहीं बीमारी है, ये तो वापस आने वाले खून की बीमारी है, या ये जाने वाले खून की बीमारी है। इस तरह की निशानियां मैं आप सब लोगों को आगे चल के बताऊंगा। और उसके बाद तीसरा पोर्शन, क्योंकि सभी नाड़ियां चाहे वो खुराक वाली हो सिवाय सांस वाली, सांस वाली नाड़ी पीछे से आगे आ रही है फेफड़ों में, वो इंटीरियर पोर्शन में मैंने आपको बताया था। बाकी जितने भी चीजें हैं, चाहे खून देने वाली नाड़ी है जिसको हमने एओर्टा बोला, चाहे खुराक देने वाली नाड़ी है जिसको हमने ईसोफेगस बोला, चाहे नर्वस सिस्टम हम बोल रहे हैं, ये सब पीछे को जाते हैं ताकि ये मीडियास्टाइनम का आगे वाला पोर्शन इसकी सेफ्टी करे। और पिछली दफा पीछे की तरफ कुदरत ने एक हड्डी का ढांचा, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो मजबूत खोल है हड्डी का, और उसको बचाने के लिए ऐसा प्रोटेक्शन की कुदरत ने कि इन सब को पीछे भेज दिया कि उसके साथ साथ नीचे जाए, खून देने वाली नाड़ी भी नीचे जाए, खुराक देने वाली नाड़ी भी नीचे जाए। तो नीचे से पीछे सा ना, नीचे नहीं भाई, पीछे पीछे जाए, और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो नीचे जाए। तो ये हमारे पोस्टीरियर पोर्शन से होकर जाने वाली चीजें हैं। अब बाकी सारी चीजें तो वही हैं, लेकिन दो चीजें और अलग पोस्टीरियर हिस्से में है जो आगे में नहीं है। वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, मतलब खुराक लेने वाली, खुराक देने वाली, वो चीजें हो गई। अब पीछे वाला जो हिस्सा है खुराक लेकर, रॉ मटेरियल खाया हमने, जो भी कुछ खाया, रॉ मटेरियल लेकर जाने वाली वो नाली है ईसोफेगस, वो नीचे आंतड़ियों को लेकर जा रही है। और इसके साथ दो और चीजें हैं जो बाकी में नहीं है, जो बाकी हिस्से में नहीं है, वो ये है। एक तो वो है जिसको हम बोलते हैं अजाइगस वेन। अब अजाइगस वेन के बारे में बहुत कम हमने बोला तो बहुत बार, लेकिन कम बोला। मैंने आपको ये कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, मैं बेसिक से लेकर सब चीज चलता हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन में बैठी हुई, मैं चाहता हूँ कि उसकी पूरी रूट हम आपको बताएं, पता चल जाए अजाइगस वेन है क्या। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको माँ की वो जो, जिसको हम नाड़ू बोलते हैं, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे की जो नाभि धुनी होती है,
इस नाभि में वो आकर सारा खून वगैरह चला जाता है और पेट की जो दीवार है रेक्टस एब्डोमिनस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये जो है ऑब्लिक एब्डोमिनस ये मांसपेशियां हैं इसके नीचे जाकर एक कुदरत ने पाइप लगा दी, ऐसे ही समझें पाइप लगा दी। नाम है उसका पोर्टल सिस्टम। बाद में उसके साथ डेवलपमेंट और होती है, नया एक सिस्टम बना देते हैं कि ये तो पुरानी नहर थी अब ये काम नहीं करेगी, अब दूसरी इसके साथ पहले तैयार कर लो, ये तो खराब होने वाली है, कुदरत पहले निजम लगती। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त ये जो खुराक माँ की तरफ से खून में मिक्स होकर आ रही है हमारी बच्चे की नाभि से अंदर जा रही है, तो अंदर एक ऐसी नाड़ी है जो इसको लेकर लिवर के पास जाती है, राइट साइड छाती के नीचे पसलियां के अंदर अंदर ही ये जो नाली उसको लेकर जा रही है, पोर्टल सिस्टम का हिस्सा है, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम का ये हिस्सा है। वहां पर जब खुराक गई तो ये एक इस तरह का ये जो है ना हमारा लिवर, ये दो तरह के काम, एक तो ये कबाड़िया है, जो चीज इसके पास ले जाओ उस सभी को इधर उधर बांट बूंट के सब अलग कर देगा। दूसरा ये फिर अब कुछ पता नहीं क्या होने वाला है भाई इसको, अच्छा खैर ये जो है उसको बांट के अलग अलग कर देता है। दूसरी बात ये जो लिवर काम करता है कि यहाँ स्क्रूटिनाइज करता है कि जो चीज आ रही है क्या ये आगे जा सकती है कि नहीं, आगे ये नुकसान तो नहीं करेगी, ये सब चीजें लिवर का काम होता है कि ये शुगर ज्यादा खा ली किसी ने या माँ को ही शुगर थी, इस ज्यादा बच्चे को ना जाए, ये लिवर उसको स्क्रूटिनाइज करके सेट करके कि इतनी चाहिए बच्चे को उतनी भेजता है। कोई चीज बाद में भी हम लोग जब होते हैं तो खुराक में जो ज्यादा चीज चली जावे उसको रोकना, उसको देखना, शुगर है कोलेस्ट्रॉल है अलग अलग उसके हिस्से हैं, उन चीजों को अलग अलग करके लिवर अपने पास रखता है, वापस उतना भेजता है दिल को जितना जरूरत है, नॉर्मल कुदरती एक बना हुआ है कि नार्म इतना ही इतना होना चाहिए, इतनी शुगर होनी चाहिए, इतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, उतना भेजता है। अगर इसके पास बहुत ज्यादा आ जाएगा तो फिर ज्यादा भेजेगा, सस्ता भेज देगा, लेकिन कम होगा तो फिर वो कम भेजेगा। खैर ये लिवर की बात थी, मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो पोस्टीरियर पोर्शन मैंने आपको बताया, मिडल पोर्शन मैंने आप सब लोगों को बताया, पोस्टीरियर मिडल पोर्शन, इसमें एक और वेन है जिसका नाम है, क्योंकि लिवर के पीछे से जाती है, लिवर के पीछे से जाती है और ये खून फिर दोबारा हार्ट में डाल रही है, जैसे जो वो सब क्लेविन वेन थी या सुपीरियर वेना केवा थी या इंफीरियर वेना केवा थी, वो हार्ट को खून वापस दे रही थी, उसी तरह ही ये जो अजाइगस वेन है इसका नाम है अजाइगस वेन, अजाइगस वेन जो है ये लिवर से, जब बच्चा माँ के पेट में तब भी लिवर से लेकर खून ये उसमें डाल रहा है, जब बच्चा बाहर आ गया हमने नाड़ू काट दिया, उसके बाद जो आंतड़ियों से मैं खून वापस जा रहा है दिल को, वो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो कई जगह कुछ ऐसे रूटीन है कुदरत के जो नियम को तोड़ देते हैं। नियम क्या है कि खून दिल से जाएगा आर्टरी में, हर एक सेल को पहुंचेगा, हर एक सेल से वापस आएगा, उसको वेनस कहते हैं, जाएगा खुराक लेकर ऑक्सीजन लेकर आएगा गार्बेज लेकर। इसी तरह ही नियम टूट गया कि जितना भी हमारी आंतरियों का खून है टट्टी वाले रस्ते से लेकर ऊपर तक स्टोमिक तक जितना भी खून है आंतरियों का, ये सीधा हार्ट को नहीं जाता, क्योंकि निचट कर इसमें से बहुत ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जो नुकसानदेह हों, इसलिए कुदरत ने ये नियम बनाया कि भाई ये जो खून है ये सीधा दिल को नहीं जाए, वेना केवा जो है इन्फीरियर वेना केवा, हमने बताया कि इन्फीरियर वेना केवा से खून सारे शरीर का पांव से लेकर ऊपर तक लेकर जा रही, ये भी तो पेटी का हिस्सा है ना, किडनी का खून जाता है वहां पर, मेडियास्टाइनम और बहुत से अंग हैं जो पेट की बात हम बाद में करेंगे जिनका खून सीधा जाता है उसी तरह वेना केवा में, लेकिन आंतरियों का खून उस तरीके से नहीं जाता, ये पोर्टल सिस्टम जो पहले माँ का हिस्सा था
अब ये जो पोस्टल सिस्टम अंतर कुदरत ने शुरू कर दिया था कि जब वो नाड़ू काट दिया तो ये जो नीचे वाले हिस्से का खून है, खास तौर पे अंतड़ियों का खून है, ये लिवर में जाएगा और लिवर इसमें जितनी शुगर है उसको स्क्रूटिनाइज करेगा, जितना कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ गया है उसको देखेगा कि उसके पास एक नाप को कंडा लगा हुआ है कि इतना कोलेस्ट्रॉल में जाने दूंगा, इतना शुगर में जाने दूंगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ज्यादती हो जाए, अब ये बेचारा कंट्रोल नहीं कर रहा या इसके पास सामान ही ज्यादा आ गया, कोलेस्ट्रॉल ही ज्यादा आ गया, शुगर ही ज्यादा आ गई, तो जबरदस्ती से वो निकल जाएंगे या बॉर्डर निकलकर वो ये मैक्सिको से बॉर्डर से लोग आ जाते हैं ना जबरदस्ती, वो जबरदस्ती आगे चला जाएगा तो फिर डॉक्टर लोग चेक करेंगे, खून चेक करेंगे, ओ तेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया यार, ओ तेरे को तो शुगर हो गई है, लिवर की डैमेज है, वो लिवर की प्रॉब्लम है कि भाई तुमने ठीक तरह देखा नहीं, ज्यादा चीज आगे भेज दी, बेशक इसको इंसुलिन ने कवर करना था लेकिन तेरा काम था उसको रोकना, नहीं रोक पाया, ये इसकी कमी बेसी है। और ये सब काम करने वाली जो नाड़ी है लिवर में, इस तरह आई हुई खुराक आंतड़ियों से दिल को भेजना सीधा काम नहीं है, लिवर के पास जाएगी, लिवर इसको फिर स्टैंडर्डाइज कर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्डाइज करेगा और फिर उसके बाद ये भेज देगा कि भाई ये हार्ट को जा सकता है जी। और ये एजाइगस वेन भी इसी एरिया में पोस्टीरियर पोर्शन बैक साइड से, बैक साइड में रहती है, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी पूरे खुराक अंतड़ियों का जड़ा कई इकट्ठा किया हुआ सारी चीज है वो वापस जाने वाली है। और इसकी एक इम्पोर्टेंस मैंने आप सब लोगों को बताई थी, मान लिया जाए बैक लोग लग गए लिवर के पास, बैक लोग लग गया कि इतना सामान ये इकट्ठा है ये भेज नहीं सकता या उसको अभी वो स्टैंडर्डाइज नहीं करता, स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकता, तो क्या होगा? ये जो पोर्टल सिस्टम है अंतड़ियों से खून आ रहा है लिवर को कि ले भाई तुम देख ला इसमें क्या क्या चीज है, उसके मुताबिक आगे भेज दे, तो उसके पास लग गया बैकलॉग, उसने कहा कि भाई ये अभी अभी पीछे बैकलॉग लग गया, तो क्या होगा? हमारी आंतड़ियों में खून का बैकलॉग लग गया, इवन टट्टी वाले रास्ते तक लग गया, तो टट्टी वाले रास्ते में जो नाड़ी खून लेकर आ रही है, जो नाड़ी खून दिल से लेकर आ रही है उसका नाम है हेमराइडल वेन आर्टरी, हेमराइडल आर्टरी खून लेकर आ रही है, और यहाँ टट्टी वाले रास्ते में जाकर रेक्टम में और एनस में ये तीन भागों में बढ़ जाती है। कई बार बोलते हैं ना मेरे मौके हो गए टट्टी वाले रास्ते में, हेमराइड्स होगी, बवासीर होगी है और उसमें तीन मौके हैं, और वो क्यों तीन मौके बोलते हैं कि खून उसमें भरकर आ गया, बैकलॉग लग गया, जो उस खून में सॉलिड मटीरियल है वो तो वहां रुक गया, उसमें ऑक्सीजन सेलों ने चूस ली, लिक्विड वापस चला गया, जो सॉलिड मटेरियल था वो वहां रुक गया, वो हार्ड हो गया, प्रेशर और बढ़ता रहा, प्रेशर तो चल ही रहा है लेकिन वापसी वाली चीज जो है वो बैकलॉग लगा हुआ है, इस लिहाज से वो मौके बाहर तक आ जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, लगता है जैसे सुई पिन चुभ रहा है, और जब हार्ड स्टूल जो क्योंकि हमेशा ही लगता है जैसे टट्टी हाजित हो रही है, हमेशा ही मेरा रेक्टम का एरिया जैसे भरा हुआ है, जोर लगाते हैं वो छिल जाता है और खून आना शुरू हो जाता है, बोलते हैं बिल्कुल तो खून ही बवासीर हो गई है जी, तो वो इस चीज की बात है। तो ये जो खून आंतरियों से इकट्ठा होकर सीधा दिल को नहीं जाता, ये लिवर को जा रहा है, इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, और ये पोर्टल सिस्टम का किया धरा जो भी कुछ उसने गलत ठीक किया ये लिवर में स्टैंडर्डाइज करके एजाइगस वेन के जरिए ये भेजा, मतलब सही माल तो वही है ना जो एजाइगस वेन जा रहा है, बेशक खराबी हो जावे ये शुगर भी ज्यादा भेजनी शुरू कर दे, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा दिल को भेजना शुरू करे, तो दिल ने तो बेचारे ट्रांसपोर्ट ही करना है ना, जो मेरे पास आ गया माल मुआ के दे दूंगा, मेरा तो यही काम है, और फिर वो खून में बढ़ जाएगी ऐसी चीज, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लाई लाइन है हमारी, ये हमारी सप्लाई लाइन है, दो मेन सप्लाई लाइन है हमारी, एक सब क्लेवियन वेन में जो आ रही है, दूसरी लिवर से जो जा रही है, ये दो हमारी मेन सप्लाई लाइन हैं, जिससे खुराक के तत्व जो है हमारे शरीर में स्टैंडर्डाइज होते हैं और उसमें जाते हैं और आगे फिर हमारी तरक्की होती है। सो ये याद रखने योग्य बात है कि वो एजाइगस वेन भी इस थर्ड पोर्शन से होकर जाती है,
और उसके बाद इसी थर्ड वाले पोर्शन में जो फेफड़ों में मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप उनका अंदर वाला हिस्सा देखें, दोनों स्टर्नम की साइड में देखें, आपने मटर राजमा देखा होगा। राजमा जैसे आप देखते हैं तो राजमा का जो अंदर वाला हिस्सा होता ना, जहां से उसकी उसको खुराक मिलती है बेसिकली, वो ऐसी तरह कर्व सा बना हुआ है। वहां से जितने भी खून की नालियां हैं वो उसके अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। इसी तरह ही फेफड़ों में भी खून जाने वाली चीज और वहां से खून बार वापस आने वाली चीज, वो इस जगह से बोलते हैं, उसका नाम है हाइलम। ठीक है, सो हाइलम से राइट साइड को भी लेफ्ट साइड, उसी में वो ब्रोंकस भी जाती है। वो जो ऊपर ब्रोंकस थी मेन, उसके दो हिस्से हो गए थी, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, वो भी इस हाइलम से होकर फेफड़ों में जा रही है। और जो थोरेसिक डक्ट हम बोल रहे हैं, जो जिसका काम लिम्फ वगैरह लेकर या गार्बेज वगैरह लेकर जाना है या गार्बेज को फिल्टर करके लाना है, वो भी यहां से आता है। तो मतलब क्या हुआ, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पीछे वाले मीडियास्टाइनम में जाती हैं। ठीक है, सो ये याद रखने योग्य, थोरेसिक एओर्टा मैंने बोल दिया, जाइगस वेन मैंने बोल दिया, थोरेसिक डक्ट मैंने बोल दिया, ये तीसरे वाले पोर्शन और इसोफेगस मैंने बोल दिया कि पीछे वाले में हिस्से में जाता है। ये आम तौर पे वेसल्स हैं, नाड़ियां हैं, वेसल का मतलब होता है नाड़ियां, नाड़ियां हैं जो इस हिस्से को सप्लाई करती हैं। अंग के तौर पे इसोफेगस, नाड़ियों के तौर पे थोरेसिक एओर्टा, जाइगस वेन, थोरेसिक डक्ट, ये चीजें होगी। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जितनी मैंने आज कर दी। इसके बाद नर्व्स हैं, जो नर्व होती हैं उसका काम होता है टेलीफोन का काम करना। अगर टेलीफोन कनेक्शन कट जाए तो नहीं आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी, मेरी आप तक नहीं पहुंचेगी। वो जो कनेक्शन वाली बात है, वो करने वाली बात इस एरिए में, मैं मीडियास्टाइनम की बात कर रहा हूँ, याद है मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मीडियास्टाइनम के एरिए में, छाती के सेंटर वाले एरिए में, वो जो सामने से 8 इंच है और पीछे छाती जिसकी बड़ी होगी छोटी होगी जितना भी होगा, स्टर्नम से लेकर पीछे रीढ़ की हड्डी तक का वो 8 इंच का जो हिस्सा है, उसमें ये अंग है जितने मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद नर्व्स जो टेलीफोन की लाइन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है और इसको दूसरा नाम भी दिया गया, 10th क्रेनियल नर्व। मैंने इस पर भी लेक्चर किया था, आगे समय आएगा तो फिर दोबारा बोल दूंगा। 12 जोड़े नर्व्स के ब्रेन से निकलते हैं और 12 जोड़े मीन 24, 12 राइट साइड से 12 लेफ्ट साइड से निकलते हैं। लेकिन कुदरत ने ना किसी को जैसे पूरे खाने डालना होता कि इसको भर्म हो जाए, पलिखा हो जाए, कि राइट साइड की जो नर्व्स इश्यू होती हैं वो बाईं तरफ के शरीर को सपोर्ट करती हैं और बाईं तरफ की जो नर्व्स हैं वो दाईं तरफ के शरीर को सपोर्ट करती, कंट्रोल करती, कह ले सपोर्ट नहीं कंट्रोल करती कह ले। और हरेक नर्व में 2 चीजें होती हैं, एक होती है लोकोमोटरी फाइबर, एक होते हैं सिंपथेटिक फाइबर, ये सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन सेल से जानी है ब्रेन को पहुंचनी है। लोकोमोटरी होती है कि ब्रेन ने क्या कहा उसके मुताबिक काम करो। मतलब आपकी उंगली किसी गर्म चीज के साथ लग गई, इमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ इट स्कैन ब्रीक सा ज्यादा चला हुआ है, वो भी तारों का ही ज्यादा चढ़ा हुआ, इसके ऊपर भी इसी तरह का नर्व के ऊपर कवर चढ़ा होता है। सो अंदर उसके 2 तरह के फाइबर हो गए, एक सेंसरी हो गए, एक लोकोमोटरी हो गए। सो ये जो नर्व मैंने आपको बताया कि ब्रेन से 12 जोड़े नर्व के निकलते हैं और वो क्रॉस वाइज काम करते हैं, राइट लेफ्ट, राइट साइड लेफ्ट को कवर करता है, लेफ्ट राइट को कवर करता है। और इसी तरह ही उनमें से 10th जो है, 10th नर्व, उसको हम वेगस नर्व बोलते हैं। अरे भाई, वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व है शरीर में, सबसे लंबी नर्व, बहुत दायरा है। यहाँ हम अमेरिका में बैठे हुए इंडिया में बात कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे कोने में बात होगी तो क्या हुआ, लंबी नर्व,
एक ये है कि लोकल लाइन है, नहीं जी ये तो यहाँ

0: लड़का के अंदर अंदर की बात ही करेगी, ये बाहर नहीं जा सकती लाइन ना। और एक बात है कि हम के देश किसी भी देश में बात कर रहे हैं, तो इसी तरह ही ये जो वेगस नर्व है ये बहुत सारा एरिया कवर करती है। ब्रेन से इशू हुई, ये इस मीडियास्टाइनम से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पास करती है, रीढ़ की हड्डी से साथ साथ पास करती है और दिल का हार्ट से नीचे गुजरती है, हार्ट के पोस्टीरियर पोर्शन पीछे वाला पोर्शन जो रीढ़ की हड्डी के साथ लगता है उस पोर्शन को भी कंट्रोल करती है। और उसमें है क्या, वेंट्रिकल, जहां खून सारे शरीर को पहुंचाया जाता है। अब इसमें कोई कनेक्शन खत्म हो गया, खराब हो गया, तो सारे शरीर को जो खून पहुंचाया जाना है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व है जो ब्रेन से इशू होती है, उसका वो टेंथ नर्व है, टेंथ नर्व है। और टेंथ नर्व सब नीचे आती है मीडियास्टाइनम में, गर्दन से नीचे निकली और हार्ट के पीछे वाला हिस्सा जो वेंट्रिकल का है, हार्ट के पीछे वाले हिस्से को कंट्रोल करती है, उसकी एक्टिविटी को, उसके चलने फिरने को, जो भी कुछ वो काम करता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। और उसके जो वाल्व है वहां पर, जो उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं या उसको सेमीलूनर वाल्व, जो वाल्व हमारे शरीर को खून पहुंचाता है वो सबसे बड़ा सेमीलूनर वाल्व है, इन सबको ये कंट्रोल करती है, इनकी कार्रवाई को कंट्रोल करती है। अगर इनमें कोई फर्क आ गया तो ये सारी गड़बड़ हो जाएगी खून सप्लाई करने में। उसके बाद ये नीचे चली जाती है, ये जो नीचे चली जाती है और उसके बाद आंतरियों को, स्टोमिक है हमारा, सबसे पहले स्टोमिक है हमारा, स्टोमिक का भी नीचे का हिस्सा जो कर्व टाइप का होता है, जैसे जे अक्षर नहीं होता अंग्रेजी का, जैसे अक्षर जे होता है इस तरह का हमारा स्टोमिक होता है। और इस स्टोमिक के पीछे वाला हिस्सा जो है उसको भी ये कंट्रोल करती है। उसमें होता क्या है, एसिड का पैदा होना, एसिड सबसे ऊपर वाला स्टोमिक का हिस्सा वहां पैदा होता है, नीचे जो गुलाई वाला जे वाला हिस्सा है वहां पेप्सिन पैदा होती है। सो मतलब अगर टेंशन हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, तो यार ये टेंशन इसको ज्यादा रहता है, इसको एसिडिटी हो गई है, हां जी, एसिडिटी खाने से ही नहीं होती, दिमागी टेंशन से भी हो जाती है। और टेंशन का कारण सारी वेगस नर्व है, जो हमारी वेगस नर्व है उसका संबंध उससे है, इसीलिए ही ये वेगस नर्व स्टोमक के बैक वाले पोर्शन में इसको भी कंट्रोल करती है, इसकी कार्रवाई का भी जुमा उसकी है। उसके बाद आंतरियों के पास जाती है, आंतरियों को से करती करती ये कहां पहुंचती, बाई तरफ, पेट के बाई तरफ, सॉरी दाई तरफ, जहां हमारा अपेंडिक्स है, जहां आप लोग बेल्ट बांधते हो, जहां बेल्ट बांधते हो ना, वहां पर हमारा अपेंडिक्स है। अगर मैं सही आपको पोजीशन बताऊं, क्योंकि मिनट बहुत कम रह गए, जो सही पोजीशन बताऊं, आपकी जो नाभि है ना, नाभि से लेकर आप, अगर ये बाई तरफ का आपका चूल्हा है, इसकी ऊपर की जो हड्डी है आप ट्रेस कर सकते हैं, अपने अंगूठे से ट्रेस कर सकते हैं, ये जो सबसे ऊंचे वाला हड्डी वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं इलियक क्रेस्ट, और इसके ऊपर ट्यूबरोसिटी छोटी सी, उसको ट्यूबरोस इलियक ट्यूबरकल भी बोलते हैं। खैर छोड़िए, ये जो सबसे ऊंचे वाला हिस्सा है वहां से आप अपनी नाभि की तरफ एक लाइन खींचे, इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन खींचे और उसके फिर तीन हिस्से कर दें, तीन हिस्से कर दें, तो दो हिस्से ऊपर छोड़ दें, तीसरा हिस्सा और दूसरा हिस्सा का जहां जंक्शन है, जहां पर दूसरे और तीसरे हिस्से का जंक्शन है वहां पर अपेंडिक्स होता है। हम बाहर से तेज, मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग छाती से देखकर बता सकते हैं कि इसके किस वाल्व में नुक्स है, क्या बताते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, इसका नाम है सरफेस एनाटॉमी। तो हम लोग जो सरफेस एनाटॉमी के जानकार होते हैं, हम बाहर से बता देंगे कि कौन सा अंग कहां पर है, कौन से अंग का उसका मुंह कहां है, पूंछ उसकी कहां है, ये हम बता देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपेंडिक्स की जो बात है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हो गया जी, इसको, वो अपेंडिक्स है कहां पर, वो आपके दाई तरफ है, दाई तरफ चूल्हे के ऊपर है। कहां भाई, अगर नाभि से लेकर वो सबसे ऊंची हड्डी तक का आप एक लाइन सीधी खींचें और उस लाइन के तीन हिस्से कर दें, दो हिस्से ऊपर छोड़ देना भी की तरफ, तीसरा हिस्सा और दूसरे हिस्से का जहां जंक्शन पड़ेगा वहां पर आपका अपेंडिक्स है, और ये जो वेगस नर्व है, तो मेरी बात वेगस नर्व की हो रही, ये जो वेगस नर्व है ना भाई, ये इस एरिया को भी कंट्रोल करती है। और इसी की वजह से हम बोलते हैं किसी को अपेंडिक्स हो जाए ना, तो निशानियों में सबसे इसको एक तो दर्द नाभि में होगी, दूसरा इसके साथ उल्टी आएगी, क्यों, क्योंकि स्टॉमिक को भी तो वही कंट्रोल कर रही, और इसके साथ दिल धड़कना शुरू कर देगा बहुत ज्यादा। तीन चीजें मैंने बता दी आपको, दिल का धड़कना, जी कचा होना, उल्टी आना, और यहां पर आकर दर्द होना, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि वेगस नर्व ब्रेन से चली है और इस सब को कंट्रोल करते करते करते करते ये यहां तक आ गई है। सो बड़ी नर्व है सबसे ज्यादा, और क्यों मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे मीडियास्टाइनम का हिस्सा है, ये हमारे मीडियास्टाइनम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कुदरत ने इसको बहुत संभाल कर रखा ताकि ये बीच वाले पोर्शन में रहे, इसको कोई नुकसान ना हो। ये पोस्टीरियर आमतौर पे पीछे का जो हिस्सा है, मिडल वाले हिस्से के पीछे वाले हिस्से में, क्योंकि मिडल के हमने तीन हिस्से कर दिए, फिर याद रखना मीडियास्टाइनम के हमने तीन हिस्से कर दिए थे, और तीन में से भी ऊपर वाला कुछ पोर्शन अलग कर दिया था जिसको हमने सुपीरियर कह दिया, बाकी के जो तीन हिस्से थे उनका अलग अलग वेरवा मैंने आप सब लोगों को बता दिया, और उसमें खासियत ये बता दी कि ये नर्वस से इसमें अंग कौन से हैं और इसमें नर्व्स कौन कौन हैं, ये सब मैंने आप सब लोगों को बता दी। और जब बाद में नेक्स्ट होगा तो मैं इसको फिर दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि आप सब लोगों को ऐसे याद हो जाए कि भाई मैं बात कहाँ की कर, मेरी कोशिश तो यही रहती है। मैं पहले वो बोर्ड पर बनाने वाला था तो वो चीमा साहब बोलते कि नहीं ऐसे नहीं, टाइम वेस्ट होता है जी, तो मैंने वो छोड़ दिया, नहीं तो मैं सामने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड मेरे पास है उस पर बनाकर भी मैं आपको दिखा सकता था कि कैसे कैसे मैं एक एक चीज को बना सकता हूँ और उसके मुताबिक दिखा सकता, लेकिन हाँ टाइम तो वेस्ट होगा ना, सो टाइम को बचाने के लिए ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, और जिसको समझ ना लगे किसी चीज की वो दोबारा मेरे से पूछ सकता है, और पूछने के लिए फोन नंबर है 4086871899। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब्जेक्ट को इस तरह इंटरेस्ट बना दूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप इसको समझें भी, इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको याद हो जाए आगे जाने वाली जिंदगी में कि भाई ये इस तरह, अब ये अंदाजा लगाओ कि ये चीजें मैंने कब पढ़ी थी। मैं 69 में मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था, 69 से 70 मेरा फर्स्ट ईयर, 70 से लेकर 71 मेरा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की चीजें हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, तब की बातें अभी मुझे तक याद है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को सब इस तरह याद हो जाए। तो आज का समय मेरा समाप्त हो गया, इसके बाद बीमारियां की बात चलेगी, मैं रिपीट करूंगा इस चीज को जो मैंने आपको बता दी, फिर बीमारियां की बात चलेगी, किस किस एरिया में कौन कौन अंग थे, उसकी क्या क्या बीमारी होगी और उसकी निशानियां क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर आप जुड़े रहेंगे इसके साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे तो ये आपका पुण्य होगा, आपका योगदान होगा इस बात के लिए कि ये बातें आम लोगों को समझ आ जाएं। जैसे थायराइड की बात ही चलेगी, अब थायराइड तो सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो गया, अब थायराइड की निशानियां क्या है, एक हाइपोथायराइड है, एक हाइपर थायराइड है, लोग बेचारे इसी चक्कर में है कि पता नहीं मेरे को थायराइड है कि नहीं है, पता नहीं मेरे को हाइपर थायराइड है कि पता नहीं हाइपोथायराइड है। ये सब चीजें मैं आपके सामने इस तरह रखूंगा कि आपको कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। तो ठीक है, आज का समय समाप्त, मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में आप समझना चाहते हैं, शरीर के किसी अंग के बारे में आप समझना चाहते हैं, और अगर ट्रीटमेंट करवाते करवाते थक गए हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, जरूरी नहीं कि आप मेरे से ट्रीटमेंट करवाएं, क्यों नहीं मिल रहा। मैं आपको नेचर का प्रिंसिपल बता सकता हूं कि शरीर को उसने सेट कैसे किया हुआ है और ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो कोई रुकावट है ना, कहीं ना कहीं तो कोई चीज रुकावट है, तो वो रुकावट की शनाख्त मैं आपकी कर सकता हूं। और शनाख्त करने के बाद आपको ये आसानी हो जाएगी कि भाई इसको सही रास्ते में हम डाल पाए और हमारा ट्रीटमेंट इलाज पूरा हो सके, हम तंदुरुस्त हो सके। सो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच।
0: क्या पल्ले कुछ
2: जी,
0: पल्ले प्या कुछ, मैं क्या
2: पल्ले पैन वाली
1: पल्ले पा करके जी, हम पल्ले तो पा पर पल्ला ही है नहीं साढ़े को
0: बीमारियां की गल भी आनी, चलो इन्हां दा इंटरेस्ट होगा, एनाटॉमी नाल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हुंदा, पर मैं एनाटॉमी दे विच वी यूनिवर्सिटी दा गोल्ड मेडलिस्ट हां जी, कई बार नहीं याद रहा, पर हाँ बीमारियां बारे लोग इंटरेस्ट होगा ना, जो मैं
1: बिल्कुल
2: करो बहुत मेहरबानी जी थैंक यू सो मच। दोस्तों यह साडा अज दा प्रोग्राम, सो बेनती यही है कि और रल मिल के आपां इन्हां प्रोग्रामां नूं

वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबा लाल जी, लाल जी से। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जाण करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत। सो सजनों, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ, ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है। एक

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो पीआर रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस.

0: वार यू आर, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा ओ ए के लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दिया सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता है, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानूं अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसीं रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, ओ लोकी जिउंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा, ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ
1: ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊਜਰਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह ठक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे वाली है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीत दे नाल चालू करांगे जी

0: चतुरा घोड़ा ये क्या रहा गोला चतुरा एक पेरा है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

वार यू आर, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बात है, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़े इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजणो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुणाउणा, ओहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारयां वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजणो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, और क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तों दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, ओ लोकी ज्यूंदियां दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।

0: ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो ईयर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स
1: पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा

पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे We respect you and your viewers. Bilkul, bilkul, bilkul.

Yes, we are all watching, guys. And we are all in for Kalave. Belkul, dosto. Asi toade ton sirf phone kalave hi ha. ते आज पहले आवर वेच दोस्तों मैं विसाखी ते गलबात करांगा ते दूसरे आवर वेच साडे सूबा सिंह जी खैरा साहब नी गीतां दे बेताज बादशाह नंदलाल नूरपुरी जी हुणा ते गलबात करनगे वंडरफुल शायर बड़े हरमन प्यारे अपने वेले दे